उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है।

0: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: I have

0: आप सुन रहे थे इंस्पायर एफएम 105.1 की नशियात में तफहीमुल कुरान का एक हिस्सा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, चलते हैं इंस्पायर एफएम की रोजमर्रा की बकिया नशियात की तरफ।
1: सूरत दुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

देखा जाए, कमज़ोरों ज़ईफ़ों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, ग़ुलामों के साथ, लाचार बेकस और बेबस बेबसों के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि

एंट्रेनमेंट, वो आपको दो बंदे, एक बंदा जब किसी एनवायरनमेंट में जाता है ना, तो उसका जो दिमाग है वो पहले ही फ्रीक्वेंसी जो है ना, उधर की जो पावरफुल फ्रीक्वेंसी है उसको ट्यून इन कर लेता है, और वो देखता है कि वो मेरे साथ चल रहा है या नहीं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी बंदे की कंपनी में बैठते हैं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं आप आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है ना बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है, वो आपसे बहुत आगे जा रहा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसको बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके साथ बस ऑटो पायलट पे चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आपको उसको कंट्रोल करना और उसको समझना और उसके मुताबिक ऑपरेट करना सिखाती हैं। तो जब आप ये करना सीख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिश्ता होश में रहकर बनाया जाता है। टकराने से किसी आदमी से टकरा जाने से गले नहीं मिलते आप, उससे आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो हम रिश्तों में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हमारे रिश्ते जो है ना, ये उसके लिए क्या वर्ड मैंने बनाया था, मैड म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का नाम हमने रिश्ता रखा हुआ है। हम टकरा जाते हैं एक दूसरे से, उससे कभी कुछ अच्छी चीज निकल आती है, कभी कोई बुरी चीज निकल आती है, हमारा कोई कंट्रोल कोई, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं की गई, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, प्लान इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें दो बंदों के आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं यूज़ की गई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर जारी बात है यही रिजल्ट्स आएंगे। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं देखते, झुकना झुकाना, इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे रिश्तों को लंबा चलाया जा सकता है। मैं कैसे 25-30 साल से वो 8-10 रिश्ते चला रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, एक दूसरे को ये देखना चाहिए उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका स्किल सेट कौन सा है जिसमें वो आपसे बेहतर है। हर आदमी जिस मैं रिश्ते में हूँ उसमें से वो इंसान मेरे से उस काम में बेहतर है, वो काम का कंट्रोल उसको देना है, उसको लीड करना है, आपको फॉलो करना है। उसको भी इतना स्मार्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में लीड कर सकते हैं और आपके किस में रिजल्ट हैं, वो वाला पोर्टफोलियो आप ले लें। दोनों बंदों को अपना अपना क्या हो गया, रोल डिफाइंड हो गया। ये रोल डिफाइंड जब हो जाते हैं चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, चाहे घर में, चाहे कंपनी में, चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर इसको आप डालेंगे। उसके बाद फिर आता है कलेक्टिव काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना उन चीज़ों में जिसमें वो कमज़ोर हैं, वो आपसे सीखेंगे, इस काबिल समझेंगे। बाहर से जाकर वो सीखने की कोशिश करते हैं, अपने से नहीं सीखते, उस चक्की की कोई इज्जत नहीं करते जिसका पीसा हम खाते हैं, और बाहर से हम जो है ना हर बंदे से विजडम लेके आ जाते हैं और वो चीज़ें हमसे होती नहीं हैं। ये बड़ी खूबसूरत इसमें पंजाबी की एक शेर था, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा मैं। तो ये आपने समझना है कि, और आपने रिश्ता बनाया है इसमें रहना है और लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म सोचेंगे, रोज़ एक नया बंदा आपके सामने खड़ा होगा, रोज़ एक नई चीज़ आप बनाएंगे, तो लॉन्ग टर्म चीज़ बुनियाद मजबूत करनी है, उसके ऊपर काम करना है, अपने पे भी काम करना होता है। कॉन्शियंशियस जो आदमी होता है ना, जो माइंडफुल होता है, जो जागा हुआ इंसान होता है, कॉन्शियस बीइंग जो होता है, वो रिश्ते में अपने पे भी काम करता है, दूसरे पे भी काम करता है और रिश्ते पे भी काम करता है, प्रोवाइडेड दूसरा इंसान उसके साथ चलने की कोशिश करे जिस काम में वो अच्छा है और उस काम को करे जिसमें वो खुद बेहतर है और उसको लेकर आए और उसमें फ़ायदा दिखाए किसी दूसरे इंसान को, और कभी कंपेटिटिव ना हो और कभी दिमाग पे काम करना है। कल मैं किसी को कोई बात समझा रहा था कि देखें, अक्सर वो कहते हैं सर आप जज्बात के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने कहता हूँ मैं बिल्कुल जज्बात के ख़िलाफ़ नहीं, जज्बात ही रोबोट को इंसान बनाते हैं, जज्बात ही इंसान को मोमिन बनाते हैं, ईमान वाला बनाते हैं। जज्बात जिसका ताल्लुक हमारे दिल और दिमाग दोनों से, वही इंसान से कनेक्ट करके वही रूह के अंदर का जो स्पार्क है उसको सप्लीमेंट करते हैं, ऑगमेंट करते हैं, उसी से रिजल्ट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जज्बात बिरयानी में नमक की तरह है, खूबसूरत कर देंगे, अच्छे से अच्छी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, परफेक्ट वो लग रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एरोमेटिक है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं पाएंगे आपके, नमक नहीं है उसके अंदर। और कई लोग जब इस नमक को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो इसमें दोबारा इसको कम नहीं किया जा सकता, वो खाने के काबिल नहीं रहती। तो अगर कम होगा तो थोड़ा सा डाल देंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो जज्बात के बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। उस बादशाह के बेटे ने बिल्कुल यही कहा था कि मैं आपसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं नमक से करता हूँ। बादशाह को बात बहुत बुरी लगी, बाकी कह रहे थे जैसे मैं हीरो जवाहरात से करता हूँ, पावर से करता हूँ, रब से करता हूँ, हर एक चीज़ से मिलाया गया लेकिन नमक से नहीं। तो बिल्कुल बाद में पता चला कि वो नमक

0: बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरह चीज़ों को समझना और छोटे छोटे स्टेप्स लेके उनकी तरफ बढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जज्बात, मोहब्बत, इमोशन, इमोशन कहते हैं जज्बात को। जज्बात वर्ड कहाँ से बना है? जज्बा, जज्बा है तो आपके अंदर यू फील अलाइव, तो उसी से जज्बात बने। तो इमोशन क्या है? मोहब्बत। इमोशन क्या है? किसी की इज्जत करना, किसी का मुकाम किसी को जहन में देना। ये फीलिंग्स जो हैं हमारी वो एहसासात हैं, वो जज्बात नहीं है। इसीलिए डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए हैं लोगों को इन चीज़ों को एक्सप्रेस करके समझ सकें। एक थॉट आपके जहन में पैदा होती है, अब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, ये आपका उसके लिए जज्बा है, इमोशंस है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ वो ये है कि जब आपसे बंदे से मोहब्बत हो गई, बंदी से हो गई, रिश्ता बन गया, काम से मोहब्बत होगी, पैशन से मोहब्बत होगी, अब जज्बात आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब आपका दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है कि इस जज्बे को लंबे अरसे तक कैसे रखना है, इस रिश्ते को कैसे बना कर रखना है, इसमें से कैसे इसकी खूबसूरतियां आपके अंदर ट्रांसलेट होंगी, इसको कन्फर्म करना है। और वो जब भी कोई वीक थॉट या नीच थॉट आपके जहन में आती है उस पर अमल नहीं करना है। वो एक थॉट है आपके जहन में जो आई है, बैकग्राउंड की वजह से आई है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई है, चाह की वजह से आई है, चाहे जाने की वजह से आई है, इसके बदले किसी चीज़ के आप लेना चाहते हैं उसकी वजह से आई है, वो उठानी नहीं है, उसको फीलिंग नहीं बना, उसको फीलिंग नहीं बनाना है, वो मेयर थॉट है। अपने जज्बे से आपने जुड़े रहना है और आप देखेंगे थोड़े से वक्त के बाद आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। जो जल्दी में कोई आपने जज्बाती होकर कोई ऐसा स्टेप नहीं ले लेना कि बनी बनाई मोहब्बत, बना बनाया दोस्त, बना बनाया काम बिगड़ जाए। हमारे लोग अपने रिश्ते हॉर्मोन्स की वजह से बर्बाद कर देते हैं, अपनी पुअर इम्पल्स कंट्रोल की वजह से बर्बाद कर देते हैं, एकदम बोल पड़ने की वजह से बर्दाश्त कर सकते हैं, चुप रह के देख लें थोड़ी देर। साइंस आपको बताती है कोई भी इम्पल्स, कोई भी यूफोरिक कॉल जिस पे आप गिव इन करते हैं वो 15 से 20 सेकंड सिर्फ दबानी और बर्दाश्त करनी होती है, उसके बाद चीज़ें आपके इख्तियार में भी आ जाएंगी, आपको समझ लग जाती है कि ये कितनी स्टूपिड थॉट है और मैंने कितनी गलत बात की और मुझे कितना अफसोस हुआ, अगले बंदे को कितना अफसोस होगा और मुझे वो मुकाम कैसे मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो वीक थॉट्स को फीलिंग, एहसास बना लेना और अपने जज्बे को या जज्बात को ख़राब कर लेना, इसके खिलाफ हूँ मैं। जज्बात के कोई खिलाफ नहीं हो सकता, वो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसी के दिल में वलवला पैदा करते हैं, उसी से रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ। उसने कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ। बाद में पता चला कि ना वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं न्यूरॉन्स तकरीबन 40,000, तो वो भी उसमें भी थॉट्स और उसमें भी फीलिंग्स हैं। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको जब आप ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: Pink River Dolphins. The Amazon River is home to unique pink river dolphins, also known as bodos. They aren't born pink. They start out gray and turn pink as they age. Scientists believe the color comes from scar tissue caused by rough play and fighting, meaning the pinker, the dolphin, the cooler they are.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Nice of you. Thank you very much. Bahut hi khoobsurat thought diya. Dusri mere paas hai. Main uske baad baat karunga. Radio Azad, you're on the air.
11: Hello. जी अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम.
11: अच्छा सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने अभी थॉट्स की बात की और आपने बात की कि जो नेगेटिविटी आती है आपके दिमाग में उसको अपने ऊपर सारी नहीं करना चाहिए, राइट? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन दैट केस अगर दो बंदे एक रिलेशनशिप में हैं या उस तरह का रिलेशनशिप मीन्स के दे आर थिंकिंग दैट दे आर इन सम इमोशनल रिलेशनशिप या कुछ ऐसा, ठीक है, पसंद करते हैं या कुछ ऐसा, तो उस वक्त भी तो नेगेटिविटी भी आती है पॉजिटिविटी भी आती है और फिर एक बंदे को लगता है कि दैट अदर वी डोंट हैव द कंपैटिबिलिटी या इस तरह, उसमें आप क्या कहोगे?
0: अच्छा, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. सवाल बहुत अच्छा है. जैसे अभी आपने कहा, अब सवाल ये था कि दो बंदों एक रिश्ते के बीच में है, उसमें भी पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है। मैं एक्चुअली उसी के बारे में इससे पहले भी वही बात कर रहा था कि ये ऊंच नीच आती रहेगी। इसमें आपने जो थॉट्स आपके जहन में आती हैं, थॉट्स किन चीज़ों से आती हैं बाय द वे? थॉट्स आती हैं जो आपने देखा है, पास्ट में देखा है, जो आपने किया है, जो आप अभी कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से मिलकर आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है, झमाके होते हैं, और उसमें से आपके अंदर जो डोमिनेटिंग साइड है आपकी, अगर आप दुखी रहने वाले लोग हैं या दुखी रहने वाले इंसान हैं तो फिर आप दुखी थॉट्स उठाएंगे। जैसे गाने होते हैं, कुछ लोगों को दुखी गाने पसंद होते हैं, रीज़न उनके पास कुछ नहीं होता, उनको हैप्पी हैपनिंग हिप किस्म की चीज़ें नहीं पसंद होती। चॉइस आपकी अपनी होती है, इस चॉइस के पीछे बैकग्राउंड में जाके पता चल सकता है कि ऐसी चॉइस क्यों है, क्यों आप इस तरह सोचते हैं, क्यों आप इस तरह के हैं, और दूसरे लोगों को भी आप उसी तरह सोचवाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका एक फिर और बड़ा लंबा एक प्रोसेस है इसका। तो आपने ये देखना है कि थॉट जब आई है उसमें से जो पॉजिटिव थॉट है, जो 10 times ज़्यादा स्ट्रांग है, वो थॉट आपने उठानी है, और वो थॉट जो कंड्यूसिव है रिलेशनशिप के लिए। दूसरा आपका इसमें ये पॉइंट बन सकता था कि एक बंदा अगर ये वाली थॉट उठाता है और उसकी फीलिंग बनाता है और इस तरह आता है रिश्ते के अंदर, तो दूसरा बंदा अगर ये काम नहीं करता तो फिर क्या करें? फिर रब ने ये आपको बताया, समझाया है, इल्मुल बयान आपको कम्युनिकेशन सिखाई है। आप प्यार से बात करके, समझा कर, रीज़न एंड लॉजिक देकर समझा सकते हैं, उसको हेल्प की जा सकती है, आप अपने एक्शन से आप लीड कर सकते हैं। पहले आप करके दिखाएंगे, फिर दूसरा बंदा करेगा, इस तरह करते करते आप उनको आहिस्ता आहिस्ता, अगर इंसान के पुत्र हैं वो, तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आ जाएगी, और वो साथ साथ चल के, पहले अगर उन्होंने नहीं देखा तो अभी देख लेंगे। पुरानों के बिल जो हैं वो आपके ऊपर नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि जिस उम्र में हम हैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख कर, सुन कर, समझ कर आ चुके हैं। हर आदमी को यही लगता है कि उसको बहुत पता है। दूसरी बात कि वो बंदा मेरे मुताबिक क्यों नहीं सोचता। देखें, गौर से ये बात सुनिएगा, आपकी जो आंख है ना, ये कलर इस वक्त जो मैंने पहना हुआ है ना, आपको ये कलर उस तरह नज़र आ ही नहीं सकता जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बेहतर देख सकता हूँ, इसका मतलब ये है ब्रेन के अंदर जो जगह है जो कलर को प्रसीव करती है, मेरी आंखों का जो कलर है, ये तमाम चीज़ें मिलकर, वो लाइट जो इस वक्त पड़ रही है या नहीं पड़ रही, जिसको आप देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, वो सब का सब मिलकर जो कलर बना रहा है, दूसरा इंसान वो कलर नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरे इंसान को इस कलर के नज़दीक नज़दीक ज़रूर दिखाया जा सकता है, अगर ये ब्लू है तो उसको ब्लू नज़र आ सकता है, और कलर ब्लाइंड बंदे को जो भी स्पेसिफिक रीजंस अभी मैंने बताए हैं उसके मुताबिक कभी ये कलर नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसको ये ग्रीन नज़र आता है, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ऐसे रिश्ते कई होते हैं, एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट एंगल से देखने से। एक टेबल पर 6 लिखा हुआ है, मुझे वो 6 नज़र आ रहा है, उस तरफ बैठे हुए बंदे को 9 नज़र आ रहा है। गलत वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कैसे इसको फिगर आउट करेंगे, उसको मैं कैसे इस तरफ लाऊंगा, या मैं कैसे वहां जाकर देखूंगा भाई इसको 9 नज़र आ रहा है, तो फिर उसको समझाया जा सकता है कि ये चीज़ कैसे, और वो भी अंडरस्टैंड करेगा। अगर उसका कौवा सफ़ेद है तो फिर कुछ हो नहीं सकता उसके लिए, फिर आपको, फिर आप दो बंदे कमरे में बैठे हैं और एक स्टूपिड नहीं रहा, फिर दो हैं, और लंबे अरसे तक अगर आप ये काम चलाएंगे, और इनसे अगर आप कोई और चीज़ पैदा करेंगे तो फिर यही हालत ऐसी ही रहेगी, और फिर ये कभी चीज़ें सीधी नहीं होंगी। इसीलिए कंपैटिबिलिटी का कहा गया, इसीलिए कहा गया कि खानदान देख लो, इसीलिए कहा गया कि सोच देख लो, रहन सहन देख लो, कंपैटिबिलिटी फाइनेंशियल देख लो, ये 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। इसके लिए दीन देख लो, ताकि राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और कुछ एक्शंस जो आप लेते हैं वो एक जैसे रहें, ताकि ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, ताकि जब आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा बंदा या ऐसा रिश्ता बनाते या सिलेक्ट करते हैं, ये पहले सोचने की चीज़ें। फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है जी पहले हमें नहीं पता था, जैसे खलीक कुरैशी साहब कहते हैं, आज़ाद जी आप हमें 80 साल की उम्र में मिले तो अगली 10 साल में ज़िंदगी बदल गई मेरी, पहले मिल जाते तो और बहुत कुछ हो जाता। तो लेकिन उनकी ज़िंदगी बदली क्योंकि मैंने जो कुछ उनको बताया उन्होंने एज इट इज़ अप्लाई किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरी 30 साल का ये एक्सपीरियंस है, 40 साल का वो एक्सपीरियंस है, मैंने दुनिया देखी है, आप अभी छोटे हैं, कम उम्र हैं, फ़लाँ हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी ज़िंदगी के 4 बड़े मसाइल थे, 4ों पर मैंने सिर्फ 1 दफ़ा उनसे कहा, अगले दिन उन्होंने अप्लाई किया, एक दो तीन सालों में वो सब खत्म हो गए एंड ही वॉज सो ग्रेटफुल. मैंने उनसे ज्यादा किसी इंसान को ग्रेटफुल नहीं पाया अपनी जिंदगी में. आज भी जब वो अल्जाइमर का शिकार है, इज 94 ईयर्स ओल्ड, आज भी जब वो मुझसे मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं आपके मुझ पे बड़े आसान. मैंने और कभी उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा. और एक 85 साल का बंदा एक दिन मुझे कहता है, आजाद आई वॉन्ट यू टू मूव इन विद मी. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे मूव इन हो जाऊं. तो मैंने कहा क्यों, तो आगे से कहते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू बिकॉज यू आर प्रेशियस. तो मैंने कहा सर मैं आपकी आधी उम्र का हूँ, मैं मतलब आपका, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए. आप मेरे लिए खाना बनाते हैं, शौक से मुझे बुलाते हैं, मैं आपकी कंपनी इंजॉय करता हूँ, हम मिलकर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बोल के लब आजाद हैं तेरे, देखते हैं सुनते हैं उसके बारे में बात करते हैं, मैं आपसे इतने एक्सपीरियंस इतना को लेता सीखता हूँ. तो ये आपका काम नहीं है करना, और जिस उम्र में आप हैं कुछ दिन आप मेरा काम करेंगे, फिर मैं आपके काम करता रहूँगा, और उसके बाद चीज़ें मसाइल का शिकार हो जाएंगी, फिर भाभी बच्चे बाकी लोग यू नो एक मसला एक बन जाएगा. तो हर बंदे का अपना तरीक़ेकार होता है बात करने का, चीज़ों को समझने का. जब आप फॉलो ही नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ को, ईमान ही नहीं है आपका. जब देखें ईमान के बारे में एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत लड़ते हैं ईमान के बारे में, एज इफ मैंने ठेका लिया हुआ है रब वाली साइड को क्लियर करने का और मैं वकील हूं उनका. ना हमारी इतनी औकात है ना मजाल है. मैं सिर्फ ये बात कहता हूं और ये मैं साबित कर सकता हूं अपनी ज़िंदगी से और अपने इर्द गिर्द से और हुजूर पाक की इस बात से कि जो इंसान रब का शुक्रगुजार नहीं है वो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता. बिल्कुल इसी तरह जिस आदमी में फेथ है ही नहीं, बिलीव ही नहीं है उसका, वो इंसान जो 25-30 साल से उसके साथ रह रहा है वो उस पे देख कर सुनकर उसके एक्शन और उसके रिजल्ट के बावजूद उस पर ईमान नहीं ला रहा, और उसके जहन ने उसको कौन किया हुआ है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और जिसने सब करके दिया वो नहीं है. ऐसा बंदा रब पे मुझे कह रहा है जिसको मैंने देखा ही नहीं, मैं उस पर बिलीव कर लूंगा, और कहीं पर भी उसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता कि रब पे बिलीव है. ना सब्र है, ना तवक्कुल है, ना शुक्र है, ना जब मुश्किल तकलीफ वक्त आती है स्टैंड ले सकते हैं, ना किसी के साथ स्टैंड ले सकते हैं. तो कहाँ है रब हमारी ज़िंदगी. तो फेथ अगर नहीं है तो इंसानों पर भी नहीं, सच्चाई अंदर नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगी, अच्छाई भलाई अंदर नहीं है तो हर एक पे शक रहेगा. झूठे को सब कुछ झूठ लगता है, शराबी को लगता है सब पीते हैं, सिर्फ बताते नहीं छुप कर पीते हैं. मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस तरह सोचते हैं, जो खुल के बोलते हैं कम से कम रब के मेरे पे इतनी मेहरबानी ज़रूर है कि ये दुआ करने के बाद कि ऐ मेरे रब मुझे चीज़ों की असल हकीकत का इल्म दे. लोग खुल कर मुँह से बोल देते हैं, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, कत्ल क्यों ना हो जाए और बड़े जालिम और गुनाह और मतलब ना हो जाए, चाहे कबीरा हो या सगीरा, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर डॉक्टर को या वकील को काम बताए बगैर आपकी मर्जी नहीं हो सकती. तो ये वो तमाम चीज़ें जिसमें साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग से होना है. चाह से कुछ नहीं होता, चाह आपके अंदर सिर्फ बेचैनी पैदा करती है अगर, तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो आपकी नहीं बनती. आप इज्जत वाले काम करते नहीं और आपकी चाह ये है कि आपकी इज्जत अफजाई हो. आप कदर कराने वाले काम नहीं करते और आप चाहते हैं कि आपकी कदर बड़े लोगों की नज़र में, तो उसी वक्त एंग्जाइटी स्ट्रेस शुरू हो जाएगा आपको, बिकॉज आप उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रहे. प्लान कहाँ है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे. दीवाने के ख्वाब में आखिर में दीवाने को वो मिलता नहीं है जो उसको दिखता है या वो दिखाता रहता है खुद को, वो एक हवा सा होता है. लेकिन ख्वाब वो जो आपको सोने ना दे, अक्सर तो लोग आपसे कहते हैं, लेकिन ख्वाब वो जिसके ऊपर आप जब चलें हर वक्त हर सांस हर लहजा उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, खिलवत में हैं, जलवत में हैं, लोगों के साथ हैं, अकेले में हैं, कुछ सोचते हैं, डायरेक्शन आपकी उस गोल की तरफ है जिसमें आप जा रहे हैं. एंटरटेन करें, खुश रहें, जो मर्जी आप करते हैं, कोई भी चीज़ आपको बेचैन नहीं करेगी, क्योंकि आप उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसकी मंजिल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जा रहे हैं और स्ट्रेस कम होता जा रहा है, मोटिवेशन बढ़ती जा रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है. लोगों को जोर ज़बरदस्ती से आप अपने साथ नहीं रख रहे, वो एफर्टलेस ईज से साथ चल रहे हैं. जोर ज़बरदस्ती एग्जॉस्ट कर देगी. दूसरे बंदों की विल आपके इख्तियार में नहीं है, इसीलिए फ्री विल है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. दूसरे क्या सोचें, क्या करें, कैसे करें, ये आपका और मेरा करने का काम नहीं है. इवन पैगंबर को कहा गया आप क्यों दुखी होते, आपका काम सिर्फ पैगाम देना है. उसके बाद जो जिसने किया, जो जिसकी एफर्ट, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की. कोई मेहरबान हमारे साथ करते हैं उनसे बात. रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर.
12: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
12: क्या हाल है तुम्हारा?
0: अल्लाह का करम. सो क्या जो
12: शुक्रिया अल्लाह.
0: तुसने गल नोट की थी, इनको बोलने वाले सारे मुच अथरे और देखें, और हिंदू को कमाल जबान है, अब मुच जब हम कहते हैं ना इसका मतलब है बहुत, और हिस्पैनिक्स कहते हैं मूचो ग्रासियस, तो ये सारे वर्ड, ये सब कुछ है, ये बंदों ने सब फ्रॉड किया हुआ है, ऐसे वर्ड्स निकालते हैं उसको हिलाते चुलाते हैं उर्दू हिंदू को पंजाबी वाले, और कहते हैं जी ये इसका लफ्ज है ये उसका लफ्ज है, मिक्स करके सारी बातें एक जैसी हैं। जैसे हमने रब को मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम दे के अलग अलग डाकखाने बनाए, अलग अलग लड़ाई झगड़े बनाए, और रब वही है, तो नाम कुछ भी रख लें आप उसका।
12: कुछ चीजें शेयर करनी थी,
0: करिए ना।
12: अच्छा, सो घर में देसी होने के नाते माँ का जो रोल होता है बेसिकली रोबोटिक स्टाइल, और उसमें वो ये समझ रही होती है कि मैं बहुत हेल्प कर रही हूँ।
0: एक मिनट मेरे साथ होल्ड करना है, एक मेहमान को हमने ऑन एयर रखा हुआ है और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रही है, पहली व्हाट्सएप की कॉल है, मुझे उनको लेना है। रेडियो आजाद जी रौंदिया।
13: आजाद जी सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम जी।
0: मीरा सिंह जी की हाल है? सारे चीजें ऐसी डिसरप्ट करके, ऐसी पहले क्या शेर आया हैं जी जी की हाल है?
13: शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील एब्सोल्युटली ऑनेस्टली ग्रेटफुल, लाइक यू नो यू एक्चुअली पुट मी ऑन द एयर एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग।
0: वी विल वेट, हम सबको यही सब्र शुक्र सीख रहे हैं। देयर आर अदर पीपल आल्सो वेटिंग इन द लाइन, और कुछ को मैं ड्रॉप कर देंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम सब एक दूसरे सब्र करके सीखेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, एंड यू नो पीपल पुट अप विद अस फॉर लॉन्ग, सो व्हाई नॉट। जी
13: सर, दो चीजें अभी आपकी बातों से, जो एक चाह की बात कर रहे थे और रब की बात कर रहे थे
0: जी,
13: और मैंने बैठे बैठे इंटरनली रियलाइज्ड सो मच, लाइक चाह, आई हैव बीन फाइटिंग फॉर एजेस टू बी ऑथेंटिक
0: जी,
13: बट वो मेरी चाह इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट आई फॉरगॉट टू टेक द पाथ व्हिच वुड टेक मी टुवर्ड्स बीइंग ऑथेंटिक। आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सो मच ऑन बीइंग ऑथेंटिक, मैं अपने अंदर झांकना ही भूल गया।
0: आपने ना मेरे साथ एक बात थोड़ी सी बीच में, मैं आपको इसके बारे में बात बताना चाहूंगा। एक मूवी है, जरूर देखिएगा, द बुक ऑफ ईलाई, डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म है। उसमें उस बंदे के पास बाइबल का एक ही नुस्खा, एक ही कॉपी रह जाती है, और उसको लेके उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो, और उसके लिए विलन जो होता है वो पावर बन चाहने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए, लोगों को अपने यू नो सबसर्वियंट करने के लिए उसको वो किताब चाहिए होती है। उसने सारे बंदे अपने भेजे होते हैं हर तरफ से, और यहाँ पे एक बंदा जो कि वॉरियर होता है उस किताब को प्रोटेक्ट करके, और उसके लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देता है, और आखिर में जब वो किताब वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसको प्रेस में जहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो उस फिल्म की आखिरी लाइन्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए जो मैं अभी अपनी फिल्म लिख रहा हूँ उसमें आखिरी लाइन्स में बिल्कुल पावरफुल रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थॉट प्रोवोकिंग हो, लोग उसके बारे में कुछ सोचें। उसमें वो कहता है कि आई वॉज सो कॉट अप इन प्रोटेक्टिंग द बुक दैट आई फॉरगॉट टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉज सपोज टू डू एंड दैट इज टू लिव बाय द बुक। मसला ये है कि जो जैसे अभी आपने कहा ना, मैं ऑथेंटिक बनने के लिए फाइट कब से कर रहा हूं, और मैं ऑथेंटिक हो नहीं पा रहा, और मैं बार बार वो हदफ गोल जो है वो मिस कर जाता हूं। पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो अभी तक आपने नहीं की, इसीलिए उस चीज के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो है स्टॉप फाइटिंग। इज़राइलाइट्स जो है ना, इज़राइल बेसिकली हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था इज़राइल। इज़राइल का मतलब है द वन हु रेसल्स विद गॉड, बिकॉज दे वर सो पावरफुल, और अपनी विल के साथ, के रब की विल के साथ लड़ने को द वन हु रेसल्स विद गॉड। और इस्लाम कहते हैं द वन हु गिव्स इन टू द विल ऑफ गॉड, तस्लीम कर लेता है, उसको मान लेता है। जब आप चीज को स्ट्रगल करना बंद करेंगे, जोर लगाना बंद करेंगे, शायरी जोर जबरदस्ती जोर से नहीं निकलती, जोर लगाने से काफी रदीफ नहीं होता, उसमें अपने आप को सिर्फ सुकून में रखना होता है और ब्रेन वेव एक आती है उसको पकड़ना होता है। आर्टवर्क्स जोर लगाने से नहीं पैदा होते, कोई भी खूबसूरत नफीस, क्योंकि आर्टवर्क नफीस काम को कहते हैं, डेलिकेट काम को कहते हैं। कोई भी चीज जो डेलिकेट होती है वो जोर लगाने से नहीं की जा सकती। शायर कहते हैं ना, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको डेलिकेट चीज को, रिफाइन चीज को जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस करना है, एहसास करना है और फिर अपने आप को ढीला छोड़ना है। ऑथेंटिसिटी खुद ब खुद आ जाएगी, जोर लगाने से, अपने आप को बीट अप करने से नहीं आएगी। आप एक पाथ के ऊपर हैं, उस पैथ पे आपने गोल बनाया हुआ है, उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स आप हिट करते जाएंगे और अक्सर नहीं हिट हो रहे होंगे। वहां पर अपने आप को बीट अप नहीं करना है। आप तो अच्छे आदमी, आप पहले से कोशिश कर रहे हैं, कंडीशनिंग आपको तोड़ रही है, एनवायरमेंट आपको तोड़ रहा है, तो आप ये सब आपको तोड़ रहे हैं, लोग आपको तोड़ रहे हैं, सेट ऑफ बिलीव्स आपको तोड़ रहे हैं, आप खुद भी खुद को तोड़ रहे हैं। तो ये नहीं करना है, वो तोड़ रहे हैं, आपको जोड़ के रखना है और इस पे अपने आप को ठंडा रखना है। हो जाएगा, कर रहा हूं कोशिश, और मुस्कुराना है। इस दफा फिर फेल हो गया हूं, गुस्सा तोड़ना चाहता हूं मैं अपना, गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि गुस्सा हराम है, क्योंकि ये अकल को खा जाता है, क्योंकि इससे आदमी की सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि इससे लोग स्टंट हो जाते हैं, अपने आप को रिजिड बना लेते हैं, लॉक कर लेते हैं खुद को। ओके, प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, अपने साथ भी उसी तरह कहना है कि जिस दिन गुस्सा आया आदमी कुड़ता है, क्यों आया, किस एनवायरमेंट क्यों आया, क्या किया मैंने, उसने क्या किया, मेरा क्या गलत था, उस पे मेरा कंट्रोल है नहीं, मुझ पे है, हाँ है, कैसे बदलूंगा, अल्फाज कौन से बदलूंगा, कम मिल लूंगा, कम जब तक मैं इस काबिल नहीं होता आगे नहीं जाऊंगा। बिल्कुल एलर्जीज की तरह, जैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ 30-40 साल से, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एलर्जीज, आई हैड नो प्रॉब्लम विद एस्मा, आई ऑलवेज थॉट आई हैड नो प्रॉब्लम विद ADHD, कुछ नहीं था, मुझे पता था मैं एक दिन इसमें से निकल आऊंगा। जब तक मैं जोर लगाता रहा, कुड़ता रहा, मैं क्यों, दुखी होता था, जब मुझे समझ आया मैं ही कर सकता था, इसलिए कि बाकी सब कुछ जो मुझे मिला है उसके साथ ये चैलेंजेस हैं, इसको एक्सेप्ट करो, ढीला छोड़ो खुद को, वक्त के साथ ये चीज़ें ठीक होंगी। और फिर एक वक्त आया, स्टैमरिंग भी ख़त्म होगी, एज़मा भी ख़त्म हो गया, एलर्जी बहुत कंट्रोल में है, सांस नहीं बंद होता है, चीज़ें आराम से सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। ये करते करते एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी अंदर, माइंड में, माइंड ओवर मैटर वाली, जिसने मैटर के ऊपर कब जो फतह हासिल कर ली, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को एक्सरसाइजेस कर करके, कमजोर था तो वो भी उसकी ने भी स्ट्रेंथ पकड़ ली, बाकी सारे वाले दे आर फॉलिंग अपार्ट, खुल रहे हैं सारे के सारे हमारे इर्द गिर्द, लेकिन वो मुसलसल करने ही असल काम है, कंसिस्टेंसी, एक चीज के ऊपर कन्वर्ज कर देना तमाम चीज़ों के, और उसके बाद नहीं होता तो फिर गो ईजी ऑन इट, फिर लोग उन लोगों से हेल्प लेना, उस एनवायरमेंट से हेल्प लेना, उन बातों से हेल्प लेना, उन वर्ड से हेल्प लेना, उस किताब से हेल्प लेना, उस माहौल से हेल्प लेना जो आपको लगता है कि आपकी साइड क्या है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहाँ से लेंगे, लेते रहना और फिर एनर्जी साथ साथ देते रहना, ये पूरा एक प्रोसेस है मेरी जान। जब आप ये करोगे आपको पता ही नहीं चलोगे चलेगा, अब यू विल बी लाइट एज अ फेदर वन डे। स्टूडेंट जब तैयार होता है तो टीचर अपीयर होगा। आप जब अपने आप को ढीला छोड़ेंगे तो आपको जोर लगाने से चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं भी ये करता रहा हूं 30 साल, इसलिए बता रहा हूं, बाद में आपको समझ आ जाएगी कि सब कुछ दिखता है, सब नजर आता है। आवाजें 30-30, 40-40 साल पुरानी याद रहती हैं, मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वर्ड जो वो वाली ख्वाहिशात और बातें जो आप चाहते हैं कि आपके जहन में रहें वो पक्की हो जाती हैं, बाकी जहन से महव हो जाती हैं जो आपको कमज़ोर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ, वक्त पे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे मिलनी शुरू हो जाएंगी, नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं भी मिलती हैं आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस पैथ, आई एम हैप्पी दर। मैं जब रात को सोता हूँ मेरा कोई मकसद होता है, कोई प्लान होता है, सुबह उठ के मैं किसी काम पे लगता हूँ, मेरे इर्द गिर्द 2-4 लोग हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, नहीं भी करते वक्त पे करेंगे कर लेंगे, मैं उनके लिए अच्छा सोचूंगा, मैं उनको घर से निकलता हूँ उनको कुछ देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है तो मेरे अंदर उसका स्पार्क है, मेरे अंदर लेने वालों का स्पार्क नहीं है, देने वाले का स्पार्क है, तो मैं गिविंग पे कैसे ध्यान दूं, अगले खुद ही गिव करने आ जाएंगे, गिव इन भी कर देंगे, गिव अप भी कर देंगे, गिव भी करेंगे, रेसिप्रोकेशन भी शुरू हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये सब करने में 25 साल लगे हैं, तो इसीलिए मैं किसी भी बंदे को जब वो रास्ते में, बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं, थकना नहीं, अक जाते हैं, अकना नहीं, और बार बार एक ही रिजल्ट देख के पक जाते हैं, पकना नहीं है, ढीला छोड़ना है, चीज़ों के ऊपर काम करना है, हर दफ़ा मुस्कुराना है जब भी गड़बड़ हो जाएगी, रिएक्शन बदलेंगे तो आपके एक्शन आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे. हमारी सारी जिंदगी रिएक्शनरी है. एक्शंस तो बहुत बाद के आते हैं. इम्पल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, इसमें बेहतर होना है, इसमें अपने आप पे काबू पाना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली. रोना आता है तो आंखों से आंसू आने चाहिए. मैंने आज तक कभी अपने आंसू रोके हैं? मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था, जब भी मेरी आवाज़ तब सिर्फ कमज़ोर होती है या गुलूगीर होती है या मुझे जैसे मेरी आंखों में जैसे कोई बंदे की आवाज़ में आंसू उतर आते हैं, वो सिर्फ तब होता है जब मैं रब के लिए ग्रेटफुल होता हूँ. ग्रैटिट्यूड मेरी आंखों में आता है जब लोग मुझसे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं. आप मुझ पर सख्तियाँ करें, नाराज हों, लड़ाई करें, जितना आपने मुझसे लड़ना है, मैं कभी नहीं थकूँगा. ना मैं, मुझे कभी घबराहट होती है ना मैं, और जो मुझे इमोशन आता है मैं उसको रोकता नहीं. वही नज़मों में आता है, वही मोहब्बत जिसको मैं देखता हूँ तो आता है. वो खलीक साहब के पास बैठते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. मेरा जब हाथ पकड़ते हैं प्यार मोहब्बत करने वाले लोग, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बड़े हों, मैं देखता ही नहीं हूँ वो कौन है. सिर्फ प्योर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पे मेरे अंदर ये चीज़ होती है. तो आपने भी अपने आप को वीक नहीं समझना है. ये अच्छी चीज़ें हैं, ये आपके अंदर रब ये सब ने उसने रखा है. आपको सिर्फ सही वक्त पे, बाद में ये बिल्कुल सही वक्त पे निकलेगा. कभी आपको कोई वीक परसीव नहीं करेगा. ये स्ट्रेंथ है आपकी. जिस दिन इंसान होना स्ट्रेंथ है, इमोशंस होना स्ट्रेंथ है, लॉजिक और रीज़न होना स्ट्रेंथ है, जब आप इनको स्ट्रेंथ के तौर पे अप्रिशिएट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ये आपके हाथ पांव बन जाएंगे. यही पूरा प्रोसेस है, इसी को सिर्फ फॉलो करना है. गारंटी मैं दे रहा हूँ. आज तक मैंने जिसको जो गारंटी दी है वो हमेशा ठीक हुआ है, काम पूरा हुआ है. डॉक्टर अगर एक चीज़ की गारंटी दे रहा है कि दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो उसने 25 साल तक ये करके, खुद पे अप्लाई करके दूसरों के अप्लाई पे देखा है. दवाई सही नहीं ली जा रही. डोजेज को एडजस्ट करना है, एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना है, कौन सी चीज़ों से दर्द बढ़ रहा है, क्यों है ये दर्द, इसको डिग आउट करना है. और स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे दर्द कम होगा, आपका असल पर्सनैलिटी आपकी बाहर आएगी. अभी फियर है, डर है कि दर्द फिर हो जाएगा. डरना नहीं, हम दुनिया में कश्ती बंदरगाह पे खड़ी होने के लिए नहीं आई बनी है. शिप इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो खड़ी रहेगी बंदरगाह के ऊपर, पोर्ट के ऊपर. वो दरियाओं में, समंदरों में जाने के लिए बनी है. वो वियर एंड टीयर भी होगी, कभी कभी घबराहट और डर भी होगा, लेकिन वही कोहना मश्क सेलर्स बनाती है. वही वो बंदे बनाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. रब यही चाहता है इंसान से कि इंसान जो काम फरिश्ते नहीं कर सके, जिन नहीं कर सके, इतने पावरफुल हैं. हम वीक फिजिक बॉडी के साथ भी, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर और हमारी जो विल पावर है और जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको भी नहीं दी गई. वो एक दिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिफाइंड हो रहा है. हज़ारों साल लग गए उसको रिफाइंड होने में, तो हम भी कोशिश करेंगे रिफाइनमेंट की. और अगली जनरेशन, हमारा स्टूडेंट, हमारे लोग, हमारे प्यार करने वाले आगे हमको लेके चलेंगे इन थॉट्स को, इन बातों को. ये वो दरख्त है जो 100 साल में लगता है और उसके बाद 1000 साल तक चलता है. तो इस तरह चीज़ों को देखना और सोचना है. I hope it made some sense.
13: Oh, sir. Bahut, it was too many things going on for me at the same time. And at the same time, I was emotionally connecting to you, or I was a little bit busy collecting my own, you know, tears at the same time.
0: Koi masla nahi. I was also doing the same thing. You just couldn't feel it in my eyes because I'm wearing glasses. And inside, I was feeling what you're going through also, but because I have been there.
10: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
1: Next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
14: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
15: Did you see that guy on TV?
16: What, that No Comment guy?
15: Yeah, he was sick. What was his name?
16: I think it was Atiq Malik.
15: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
17: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
15: Liberty Law, there when you need us most.
18: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
19: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
20: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: Back to school tips on Inspire FM. Be prepared to have a new teacher and maybe a new class. You're getting older and closer to the end of school, so your class will change so that it is more catered to you. Just enter with a smile and with a positive attitude to learning. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.

0: تعولون.
1: If you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, two or three or four. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one or a captive that your right hands possess. That will be more suitable to prevent you from doing injustice.
2: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Sheed artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
3: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at Rishta. Networking.co.uk.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
10: Did you know that the first hafiz of Quran, of course after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was Uthman bin Affan?
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
12: This is the national and international news today, Monday, 7th of September, for Inspire FM, read by Shahi Mirza.
0: First, the headlines.
13: Israeli strikes in southern Lebanese village kill 9. Indonesian volcano eruption leaves 270,000 stranded as airport extends closures. Government condemns thuggish behavior in Portsmouth after second small boats protest off weekend. Jaguar Land Rover to cut 4,000 jobs. Germany's far-right AfD hails big victory in East but falls short of majority. Kiev air raid alerts at record high as Russia launches round-the-clock strikes. Austria's Islamic headscarf ban in force as under-14s go back to school. And now the details. Israeli airstrikes on a village in southern Lebanon have killed at least 9 people, the Lebanese health ministry says. 8 people, including a child and 2 women, were killed in one strike that destroyed a residential building and Kfar remained overnight, according to the ministry. A second strike on a vehicle killed a paramedic. The Israeli military said it was looking into the reports. On Sunday, Israeli strikes killed 7 people across southern Lebanon as the Israeli military retaliated for what it said were drone attacks by the Shia Muslim armed group Hezbollah on troops in occupied areas of the country. Some 270,000 passengers have been left stranded across Indonesia after a volcanic eruption grounded more than 2,000 flights and forced airports to suspend operations for a second day. Anak Krakatau, located 90 miles from Jakarta, began erupting late on Friday, producing lava fountains and sending volcanic ash into the capital and the Lampung province. It stayed seismically active throughout the weekend. Jakarta's Soekarno-Hatta International and 3 other airports have extended closures till 6 o'clock on Monday after volcanic ash was detected in airspaces near them. Jaguar Land Rover is to cut 4,000 jobs as the carmaker struggles with Chinese competition, US tariffs and the transition to electric vehicles. The cuts will happen over the next 2 years and will mostly affect the head office, which is based in the UK. JLR's long-term issues were made worse after a cyber attack last year caused the firm, which employs 43,000 people globally, to shut down production for more than a month. Chief Executive PB Balaji said the firm was committed to supporting everyone with care, fairness and respect through the redundancy process. A protest against small boat crossings in Portsmouth last night is a wake-up call for the government, the local Conservative Police Commissioner says. Hundreds of people protested after 140 migrants were brought to shore in Hampshire, much further west than where small boats usually arrive. The government condemned intimidating and thuggish behaviour at the protest. Commissioner Donna Jones says while crimes were committed, hundreds were acting lawfully. The Portsmouth protest followed scenes in Dover on Saturday. One protester in Portsmouth tells the BBC people are fed up with small boat arrivals. Another resident calls the scenes a shock. The far-right Alternative for Germany, AfD, is very, very close to taking power, its deputy parliamentary leader has told the BBC, after a historic victory in elections for the eastern state of Saxony-Anhalt. Sunday's preliminary results show it fell 3 seats short of an outright majority with 43.8% of the vote. It is now seeking support from other parties or individuals in order to govern. While most German political parties refused to work with the AfD, Beatrix von Storch called for its opponents to enter talks and said, "You cannot say I do not accept the vote of the people." No far-right party has controlled the German state since World War II, and governing at state level would mean powers over policing and local education. Kiev is suffering more daily air raid alerts than at any time since Russia's full-scale invasion in 2022, according to BBC Verify analysis of government figures. Most air attacks used to come at night, but Russia's new tactic of striking Ukraine's capital during the day is causing huge disruption to schools and businesses. The round-the-clock attacks have forced people to head for shelter as many as 13 times a day, with air raid alerts lasting from a few minutes to nearly 4.5 hours. As the new school year begins in Austria, a law banning headscarves in schools for girls under 14 has gone into force. The law forbids traditional Muslim head coverings, such as hijabs or burqas, in public and private schools across the country. Integration Minister Claudia Bauer from the Conservative People's Party says the headscarf is a sign of oppression and a means of controlling girls from the earliest childhood. But critics say the new law is fueling anti-Muslim feeling in the country and could be unconstitutional. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
0: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। ईरान अमेरिका कशीदगी बदस्तूर जारी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले मजीद 11 जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। डेनमार्क ने दमिश्क में 14 साल से बंद अपना सफारतखाना दोबारा खोल दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेरिस से लंदन पहुंच गए। पाकिस्तान के वफाकी वजीरों पार्लिमानी अमूर ने कहा है कि सानहा पिम्स के जिम्मेदारों के खिलाफ एक दो रोज में मुकदमात शुरू होंगे। वियतनाम की एक अदालत ने बड़े मनशियात के मुकदमे में 11 अफराद को सजाए मौत सुना दी। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेरिस से लंदन पहुंच गए हैं। एक हफ्ता ऑस्ट्रेलिया में क्याम करने और फिर पेरिस में मुख्तसर क्याम के बाद आज शाम को वो लंदन पहुंचे हैं, जहां उनके दिगर खानदान के अहम अफराद भी मौजूद हैं। आस्था भुट्टो जरदारी की भी चंद रोज में लंदन आमद मुतवक्का है। भुट्टो जरदारी खानदान का लंदन में तकरीबन एक हफ्ता क्याम का इम्कान है। वियतनाम की एक अदालत ने मनुष्यात स्मगलिंग के मुकदमे में 11 अफराद को सजाए मौत सुना दी है। यह केस मार्च 2023 में ऐसे वक्त में सामने आया जब फ्रांस से वियतनाम पहुंचने वाली चार खवातीन एयरलाइन अटेंडेंट्स की सामान से टूथपेस्ट की ट्यूबों में छुपी हुई मनुष्यात बरामद हुई। अदालत ने 20 दिगर मुलजमान को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। डेनमार्क ने 14 साल बाद दमिश्क के लिए अपना सफारतखाना दोबारा खोल दिया है। इफ्ताही तकरीब में दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा ने शिरकत की। शाम की बहाली, इस्तेहकाम और पनाहगज़ीनों की वापसी के लिए मजीद 76 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान भी किया गया है। कोपनहेगन के दरमियान बराह रात परवाजें 31 सितम्बर से शुरू करने पर भी इतफाक हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने ब्राइडन कॉर्स और मैथ्यू फिशर को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, जबकि नौजवान इंग्लिश खिलाड़ी सोनी बेकर को टीम में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा। इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि सानहा पिम्स के जिम्मेदारों के खिलाफ अगले एक दो रोज में मुकदमात दर्ज होना शुरू होंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 8 लोगों को मुअत्तल किया गया है। कमेटी एक दो रोज में रिपोर्ट में उन 8 अफराद का तायुन भी करेगी कि किसकी कितनी गलती या गफलत है। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि इनफरादी तौर पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। याद रहे कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में आतशजदगी के अफसोसनाक हादसे के नतीजे में 24 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए थे। डेनमार्क ने 14 साल बाद दमिश्क के लिए अपना सफारतखाना दोबारा खोल दिया है। इफ्ताही तकरीब में दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा ने शिरकत की। शाम की बहाली, इस्तेहकाम और पनाहगज़ीनों की वापसी के लिए मजीद 76 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान भी किया गया है। कोपनहेगन के दरमियान बराह रात परवाजें 31 सितम्बर से शुरू करने पर भी इतफाक हुआ। वियतनाम की एक अदालत ने मनुष्यात स्मगलिंग के मुकदमे में 11 अफराद को सजाए मौत सुना दी है। यह केस मार्च 2023 में ऐसे वक्त में सामने आया जब फ्रांस से वियतनाम पहुंचने वाली चार खवातीन एयरलाइन अटेंडेंट्स की सामान से टूथपेस्ट की ट्यूबों में छुपी हुई मनुष्यात बरामद हुई। अदालत ने 20 दिगर मुलजमान को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
3: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
14: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. we are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: Making sure you get home safely. Khalil Mohammed on the Drive Time Show has got your back.
1: Wherever you find yourself, why not tune into Khalil Mohammed on the Drive Time Show here on Inspire 105.1 FM.
2: Move for 10 आ गया है. This Girl Can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा. मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी.
3: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.
4: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.

अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें, और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कंफ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है को एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूंगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहां से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आजादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की जिंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की? नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी जबान पे, बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूं, हमारे यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, आप फर्ज करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुलाम हैं, मैं कहता हूं चलो ठीक है, गुलामी कबूल कर लीजिए आपकी, क्या करूं जी आपके गुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहो जी ये तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं और आप मुझे दूर से देख रहे हो, एक दिन मैं जरा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा मेरी नजर फौरन कहां गई, मालिक की तरफ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज नहीं कहा मैंने, मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सजा भी नहीं मिली। तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं जरा एक और दफा गलती से करके देखूं क्या होता है, तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूं सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ, और घूम फिर रहा, और बॉस से भी, बॉस कह रहे लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूं लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से, इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने जमाने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहां से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं 3री जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थीं वो सीनियर थीं, और बहुत ही यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के कयामत याद आ जाती थी।
1: मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफे सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा होके ट्रिक्स कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ कुछ कर, वो तालियाँ बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे एक दो दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चों ओपन अप पेज 5। क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज 5। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यार टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हाँ लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है अच्छे नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया, क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया, धोखे में तो नहीं पड़ गया। तो जब कहा ना अर रहमान अर रहीम तो ये खतरनाक बात कह दी, रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी किस अल्फाज, किन अल्फाज से, अर रहमान अर रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कहो ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता एक लेक्चर मैंने सुना था अर रहमान अर रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर रहमान के अंदर और दो होती हैं अर रहीम के अंदर, छुट्टी है ना। अर रहमान अर रहीम में तो फिर बिगाड़ का सारा सामान, इन दो अल्फाज में जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है, तो फौरन अर रहमान अर रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे, कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है। इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब सूरत है अल्लाह ताला की, इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक, है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज हैं, अर रहमान अर रहीम। अब उन दोनों लफ्ज के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी और एक मुस्तकिल है। आर्जी वाला कौन सा था, الرحمن. اور مستقل والا کون سا ہے؟
0: اب یہ عجیب
1: کلام دیکھیں اللہ کا، رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی وہ بات یا اگلی زندگی کے بارے میں؟ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں، اور اس سے قریب تین ترین لفظ ہے الرحمن جو اس زندگی کے بارے میں ہے. مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس کس زندگی کے بارے میں، اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ الرحیم، جو ہمیشہ والی رحمت، اس سے قریب ترین. کیا عجیب کلام ہے، کیا ترتیب ہے اس کلام کی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. اچھا، شروع ربوبیت سے رب، انتہا مالک سے، اور درمیان میں دونوں کے کیا؟ رحمت. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا، یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے. لیکن ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے، لیکن جب ڈر نہ لگنے لگے تو اس جتنا گہرائی میں اس رشتے کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی. اس کے باہر باہر اتھارٹی ہے اور اندر اندر محبت ہے. رب، مالک، رحمہ. عجیب. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب جلدی سے ان تین آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ بہت آسان ہے سمجھنا. دین سے شروع بات کرتے ہیں. دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو، فیصلے کو. دین عربی میں اوسو اس کو بھی کہتے ہیں، کسی سے آپ کا معاملہ ہو رہا ہو نا اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے، میرا معاملہ طے ہو گیا، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. کما تدین تو دان، جیسے تم دوسرے سے معاملہ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ عربی کی کہاوت ہے. اچھا، اگر شدید محبت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ نفرت، عذاب. اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا. اور دین کیا ہے؟ انصاف، فیصلہ. اور فیصلے سے کیا، کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ انصاف کی طرف. تو اگر آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹو ہے، مثبت ہے، اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے، تو عدل کہاں پہ ہوگا، انصاف کہاں پہ ہوگا؟ صفر. نہ محبت نہ نفرت. اللہ تعالیٰ نے اتنی، اس کی اتنی عظیم رحمت ہے، اس نے نفرت کا، عذاب کا، غصے کا ذکر بھی نہیں کیا، منفی کا ذکر بھی نہیں کیا. اگر یہ پورا چارٹ ہوتا نا تو ایک طرف پازیٹو میں الرحمن الرحیم ہوتا اور دوسری طرف عزیز ذو انتقام ہوتا، المعذب کچھ ہوتا، لیکن وہاں بھی صفر تک لے گئے، منفی تک نہیں لے کے گئے، صرف دین کی بات کی، یعنی انصاف کی بات کی. اور یہ کیوں کی؟ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا وہ عذاب نہیں ہے. فاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے، وہ انصاف ہے. انہ من سوء الى یوم القیامت فقد ہلك، ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھ لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اچھا، جس کی کتاب اس کی سیدھے ہاتھ میں ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ وہ سیکیورٹی گیٹ پہ پہنچتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. آسان حساب سے مراد روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولیں گے بھی نہیں، گزرنے دیں گے، جی ہمیں بتایا آپ جائیں. کیونکہ آپ کے کون سے ہاتھ میں کتاب ہے؟ اب آپ نروس، آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہے لیکن آپ کہیں اگر آپ یہ پیج 130 پہ جائیں تو اس میں ایک حج ہے، وہ ضرور دیکھ لینا. جیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے ہوتے ہیں لیکن ایک صحیح جواب دیا ہوتا ہے، تو اس کو آپ پہلے دکھاتے ہو ٹیچر کو، یہ والا یہ چیک کرنے ذرا، یہ والا. اچھا، یہ اگر پیج 503 پہ جائیں تو وہاں ایک شاید ایک للۃ القدر تھی میرا خیال ہے اس میں ایک، تو آپ، لیکن وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جاؤ، آپ کی خیال ہے، نکلو، کوئی بات نہیں. عجیب حساب. دوسری طرف کہا ہے کسی کی کتاب ان لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوگی، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता है कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहां पर जब अद्दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है। जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा? मालिक। तो क्या निकल गया रब के मायने में से, क्या निकाल दिया गया? तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम मानी थे ना, वो सारे निकल गए और क्या रह गया? मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर और एक इक्तदार वाला भी है, तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना, वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक्तदार वाला पहलू है वो कहा? मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज है, और दो चीजें, यौम। यौम किसे कहते हैं? ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो, लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते, आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज है जो आप जो भी कर, जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी जितना भी इक्तदार आ जाए, एक चीज है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है? वक्त। और वहां उसने उस एक चीज की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूं कि ये यहां पर एक थैला हो और मैं कहूं ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है? मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली? उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात एक ही मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिक यौम, मालिक यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी पूरी कायनात उनके अंदर मुजमर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझ लें। मालिक असल में दो किराआत हैं हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे। मालिक और क्या? मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है। मालिक गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं बताएं? बादशाह को। बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहां जरूरी हैं। समझ लें क्यों। बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस मेरे ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं इस जूते का बादशाह हूं। मैं क्या कहूंगा? मैं जूते का मालिक हूं। मैं घर का बादशाह हूं या मालिक हूं? मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूं, मालिक हूं? मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूं, क्या बात सामने आ रही है? बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीजों के। जो बमुकाबिल छोटी चीज होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है? बादशाह। अब एक और फर्क भी समझ लें। अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीजें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसकी नजर है? हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है? आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को, उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं?
0: जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है। ऐसा ही है ना, आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बड़े काम आते हैं, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है, अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा, मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा, अगर मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ उसे दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता भी दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या, मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं, क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है, क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है, क़यामत के दिन में आसमान फट के खुल रहा है, क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायज़ा दिया जा रहा है कि नहीं? ला युगातिलु सगीरतन वला कबीरा, ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत दो तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुतालिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुतालिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिकियों में दीन में। आपके जाने से पहले हमने तीन आयात का मुताला किया है इस वक्त, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन। मेरे नज़दीक क़ुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ, कोई अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस ये तीन आयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहली चीज़ जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है, उसका नाम अल्लाह है, उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज का, तमाम इंसानियत का, अजल से अब तक अलआलमी। और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है जिसमें फिर पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा, और एक बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और छोटी छोटी चीज़ तक हिसाब लिया जाएगा मालिक यौमिद्दीन। एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर आ गई मेरे सामने, एक पूरी तस्वीर आ गई, जिसमें ना इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरूँ, या इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं और मुझे कोई फिक्र ही ना रहे। दोनों के दरमियान में एक मुकम्मल बैलेंस ये आ गया, ये बात आ गई अभी तक फातिहा में। और इसके बाद जहां से हम कल बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो होगी कि अगर ये कोई बात सुन ले तो वो किस नतीजे पे पहुंचेगा, यानी इस सारी बात का। ठीक है, आपने ये बातें सीख ली अल्लाह के बारे में, सो व्हाट, फिर क्या, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अगली आयत असल में इन तीन आयत का नतीजा है, कि जो इन तीन बातों को, इन तीन आयत को समझ ले वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा, और ख़ुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया, कहा इयाका नअबुदु, हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं, यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के, वो आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह, उस पे कल मुलाकात होगी।
2: Subscribe now to the Bagina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
0: जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया। वादे क्या कर रहा था, इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा, क्या चाहिए तुम्हें?
3: Coming up next, English Talk Series. continue listening to Inspire FM. Inspire FM. रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है लेकिन घबराइए नहीं, इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: In Rabiul Awal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
8: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Send in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
3: Catch a creative vibe on the Urban Cube with Sister Shamiza.
10: And assalamu alaikum. It is 10 o'clock, 31st of August, and you're listening to me, Shamiza, taking you all the way up to 11 on where else? On Inspire FM 105.1 FM. It's an absolute pleasure to be in your company on this bank holiday Monday. Look, I don't give up my bank holidays for you guys. I'm here in the studio, as always, on the Urban Cube Show, keeping you informed, entertained and inspired with great guests. And today's show is no exception. I'm joined by a fabulous guest who's actually local to us from the heart of Luton. Now, you can catch the conversation, Luton's surrounding areas, but also Peterborough's Salaam Radio and Sheffield's Link FM. And you can actually see what's happening in the studio too, because we are Facebook Live. Inspire FM Facebook Live page is open, live, and you can get to see our guest in the studio who's waving to the camera right now. She's in the studio with us, and I'll tell you who that is very, very shortly. Now, if you would like to leave any comments, any questions, feel free to do so on the Inspire FM page, or alternatively, you can WhatsApp us on 07779 418 1822. Now, Bank Holiday Mondays, I mean, that's a day where I actually like to go and watch a movie. And today, that kind of inspired me about the type of films that I would like to see more of. And I think films around heritage. So today we're going to be shining a light on the power of film to preserve the stories, memories and traditions that connect us to where we come from. Our guest today is Safura Ahmed. She's an emerging documentary filmmaker and storyteller from Luton, also known as Little Bird. Safura is passionate about exploring identity, culture and human stories through film. Her recent project, Me, My Gran and Roots, is a three-part mini documentary series that takes us on a deeply personal journey through family, heritage and generations. And at its heart is the relationship between Safura and her grandmother, exploring stories, memories and the roots that connect one generation to another. Now, it's a beautiful reminder to us that heritage isn't only found in history books, museums, or historic buildings. Sometimes heritage lives in stories our grandparents tell us, the traditions passed down through families, and the memories that can so easily disappear if we don't preserve them. And that's what we're exploring today. We are capturing stories on how film can become a living archive, capturing heritage and keeping those stories alive for generations to come. So on today's show, we are basically talking about how to preserve heritage through film, and with my absolutely wonderful guest, no other than Safura. Assalamu alaikum, Safura.
11: Wa alaikum assalam, Shima Izzah.
10: How are you this morning?
11: I am good. Thank you for having me. I'm quite excited to talk about my documentary and me as a person, as a filmmaker.
10: Absolutely wonderful. And thank you so much for giving up your bank holiday morning so early in the morning. What would you be doing otherwise?
11: I would probably be video editing my next documentary.
10: Oh, gosh. Is that going to be an exclusive for us on the show?
11: Maybe. You're just going to wait and see.
10: Oh, wonderful, wonderful. So apart from documentary making, Safura, what else do you do?
11: I'm a big lover of cats, so ooh. I'm a bit of a cat contactor as well. So I love vlogging my cats whenever they jump around or they're trying to be absolute menaces, basically.
10: And I'm sure there's going to be lots of people in this listening in that can relate to you, because I feel that we are in Luton a big community of cat lovers.
11: Yes.
10: My daughter has two. And when you say menace, I totally agree. So... your journey around documentary making, filmmaking, take us a step back. I mean, how did this all come about?
11: Honestly, the whole concept came about, I don't know if anyone remembers, but there was this big thing going on in Kashmir a while back. And I was quite worried about my nan. And as a kid, when you grow up, you know your nans and your grandparents are not going to be with you. But that reality doesn't really set in with you. And then when that stuff happened with Kashmir, it made me realize, one day my nan, my grandma won't be here. And so I wanted to preserve my memories with them through food, because when I was growing up, we had home movies, right? And I love watching them, get to see my grandparents, my uncles, even me as a young child, and what we were doing back then. And so I want to document my time with my grandma while I still can, because you never know when your grandma's going to go away or your grandparents. So why not preserve that memory of them while you still can?
10: Absolutely. And so can I take us to Kashmir? Whereabouts in, is it Azad Kashmir you're referring to?
11: Yeah.
10: And whereabouts in Azad Kashmir?
11: Meerpur. We come from a small town called Nathia. Not many people know about it. I'd be very surprised if someone from the viewers or the audience even hear Nathia and know where it is.
10: Oh, come on, people. You need to message in the studio. If your heritage comes from that area in Meerpur, give us a shout out. We'd love to kind of mention you. And tell us again, that little area is called Nathia?
11: Yeah,
10: am Nathia. Okay, pronounce it correctly. When was the last time you went?
11: Literally last year. I stayed there for about 6 weeks. It was someone's wedding. And I wanted to make the most of my time there with my nan and the people who I've grown up. No, I haven't grown up, but every time whenever I go there in Pakistan, I would visit them and hang around with them. And so I tried documenting some video clips from there, but not everyone likes to be having a camera shoved in their face. So
12: absolutely. But I think a lot more people are becoming more confident because of the mobile phones. And did you use your mobile phone to document?
11: In terms of the me and my grand roots, I use an actual camera for this because the quality is much more better.
12: Absolutely.
11: And it allows me to have a bit more control compared to a phone. Let's say if I didn't like the way the camera has captured a certain type of light of the scene I'm trying to take, or the colours is not there. Let's say the colour is too saturated, and I can't do that with the phone because sometimes the phone... it captures all the colours, but if I want to have more brightness to it, and you could put more brightness up towards it, but it won't be the same as colour grading a video, which is a lot more harder and difficult, but it also makes the video look much more cleaner in a sense.
12: Indeed. Did you gain, do you have an academic background in filmmaking?
11: Honestly, no, I have no academic background with video making or filmmaking. Filmmaking has always been something I like doing on the side. And because I'm an avid lover of films, like, say, Spirited Away or Will Hunting, I think that's what's called the movie, is one of my favourite movies. And I just love movies. I love them because of the way they're able to send a message across to the audience and how to make them feel. And sometimes movies have a way of making people feel inspired, of translating their emotions into the screen, which is great because sometimes not everyone is great at expressing emotions. And seeing that in picture kind of helps them see, ah, that's how I feel. And they were able to capture it so perfectly and it made me feel understood.
12: Mm. Absolutely. It's the way films can kind of take you into a different world and build an understanding and share stories so much more beautifully than, say, in normal life.
11: Yeah.
12: I want to kind of go back to your grandmother. The film is about your grandmother.
11: Yeah.
12: And it's cool. And it's about the roots and heritage. What is it about your grandmother that kind of really stands out for you?
11: For me, I mean, everyone's got their favorite grandparents and you could choose your uncles and all that. But my grandma's more special and my nan, both of them equally. It's just that...
12: So is this your nani or your daddy?
11: She's my daddy. When I first felt inspired, it was my nani. And... but they're both equal to me sense. It just happened to be that my grandma's here in the UK. So okay. I still wanted to create memories with her. Hopefully in the future, maybe I could do the same thing with my nan. Because once there is a video of me on YouTube, I was creating this dish called Karelian potato. She was showing me how to make it. It was one of her special dishes. And nobody in my family knows how to make it except for her. So my nan was showing me that. And that kind of, you can think of it, that idea kind of also inspired the documentary as well. Because it's something I already did with my nan, but now I'm doing the same thing with my grandma as well. And I chose my grandma because she helped raise me as a child. And... I don't know, it's just grandmas. There's something special about them,
12: absolutely,
11: aren't they?
12: Absolutely, isn't it? And they can love you and so much more without even having to discipline you. Yeah. They can spoil you. And that's a job of grandparents, right? To really spoil. But also, they're so... heritage comes from them.
11: Yeah, they it are does. The ones. They pass down emotions, they pass down food recipes, they pass down everything. The way you talk, the way you learn things, every little small things that you don't know of, they pass down.
12: Because they passed it over to your parents and your parents have handed it down to you. So to give them that, importance, I think is really, really beautiful. And I do think we have taken maybe for granted our grandparents, our great grandparents, and the sacrifices they've actually made coming to Britain.
11: Yeah.
12: So could I ask, when did your grandparents come to Luton?
11: Oh, that's a hard question because I'm not so great at remembering dates. Mm-hmm. I'm guessing around the 80s or 70s. Okay. So this has been quite a while.
12: So have you all lived in Luton and yeah. you were born here as well?
11: Yeah.
12: And so just archiving that period is so important. It's so valuable. Now, what does heritage mean to you, Safura?
11: To me, it means your ancestors, the memories, everything that's basically passed down to you. Mm-hmm. That could mean the little materials they've passed down to you, or the way you do your hair, the way you do your scarf, the way you talk. It could be anything, really.
12: Mm. Do you think that living in Luton and being of Azad Kashmiri heritage, that you might be losing your heritage?
11: That's a good question. And sometimes I struggle with that because I was born here. I am a Pakistani. I'm also British. And sometimes it's hard to find a balance between the two cultures because you want to stay faithful to both. But sometimes I like to remind other people and myself, yes, I'm from Azad Kashmir, but I'm also British. I'm both, and they make who I am as a person.
12: And do you think language plays a part in your heritage and your identity? And are you fluent in...
11: Honestly, I'm fluent at speaking it somewhat. I understand completely what when people say in Pari, my own language. It's just sometimes, because I'm... I've got two languages, English and Pari. Sometimes I can get confused with the Pari because sometimes there's some words you can't find in Pari language you can in English.
12: Okay.
11: Like, say, metaphors. Like, say, here's a funny one, my syruper. Uh-huh. Or like how Asians like to say whenever they get annoyed by something, how would you say that in English? The only thing you can say, oh, it's a headache or something like that.
12: Interesting. Okay, that's fascinating. Folks, if you've just joined the show, you're listening to Misha Meiser. The show is The Urban Cube, where I'm joined by no other than Safura, who is a filmmaker. And she's talking to me about a fabulous documentary miniseries, which celebrates her heritage. And it's called My Gran. And Safura Ahmed is a documentary filmmaker and she's a storyteller as well. She is with me live in the studio. You can catch the conversation on Facebook Live as well. And if you've got any questions you'd like to ask, or if you are from her parental village in Azad Kashmir, Mirpur, if you're from there, do give us a shout out. What's the name of the village?
11: Nathia.
12: Nathia. It's the first time I've heard of it. So it'd be lovely to know if there's anybody in Luton or Peterborough or Sheffield or surrounding areas that comes from that area. We'd love to find out as well. Today's show is all about how we can kind of embrace our heritage through filmmaking. And mashallah, Safura has made this wonderful mini documentary series. And we're going to find out a little bit more about that. So the process of making this documentary series, how did it all come about, Safura?
11: Can you rephrase that question?
12: So was this something that you'd initiated and you funded yourself, or was it part of a program, a project?
11: So this was a project I did with Luton Create Fund. Mm-hmm. I applied for it about 2 years ago and I did it on a whim. I didn't think I would actually get it because whenever I thought about art, I would think, you know, painting, creating something with your hands, or sculpting. I didn't really consider filmmaking as something as a form of art. So I was really surprised. And I also told myself, filmmaking is an art, considering we've got movies and stuff like that, and they're able to convey a message and inspire people. So that broke a barrier within me. And then the people at Luton Art Fund, Luton Arts, they have been so supportive throughout the whole process. And they even got me in contact with Two Sides Studios. And because I didn't have any equipment back then. And even though I bought one, I wasn't, very technical person. So when I borrowed the one from Jasper from Two Side Studios, he showed me how to use it. And throughout the whole process, he reassured me that I was doing quite well, despite my background in no filmmaking. And it kind of helped through the whole process when I was first capturing scenes that I wanted to create in my that I had in my head, but executing it, which is quite hard because you have an idea in your head and it doesn't always come out perfectly the way you want it. And I kept reminding myself, as he reminded me, Jasper, that it's due to my lack of experience and these things get better as you go on. Sometimes you're going to make mistakes, but those mistakes will help you along the way. And let's say, for instance, there's one instance of me walking and showing my face towards the camera. Honestly, I was so nervous. I'm so bad with cameras in the sense that I don't like showing my face on camera. So with this project, it really helped me get over my fears, especially someone who's quite an anxious person. So I got into the camera and it was quite surprising. Sometimes I would have people coming up to me asking me, oh, what is this for? Are you documenting Luton? And people were so friendly and so nice. And it just made the whole process so wonderful because the whole project made me feel nervous because I didn't know what the reaction would be, how it would go about. And yeah, it was just so nice having this.
12: And here you are, yeah, talking exactly. about it. Talking about, which is absolutely wonderful. And I love the fact that there was mentorship provided for you by Two Sides Studio, who kind of helped you through the process. And it did seem as if they were quite warm and not intimidating either, because they're well experienced themselves as filmmakers. So, but I love the fact that whilst you were filming, people were coming up to you.
11: I know, it was so strange, but it was so nice because they kind of help your breakdown barriers that you have. It helps people, you know, give that little bit of confidence to you every now and then. And just having that friendliness and the welcoming feeling just makes the whole process more easier.
12: Absolutely. And I think Luton is always in the spotlight, but to see a female, an Asian female actually behind the camera, who's from Luton, making a film about Luton as well, is really special. Were there any highlights for you in the filmmaking process?
11: This is a bit of a funny one. When we were filming the shopping scene for the meat and getting the ingredients, there were loads of locals coming in. I felt so bad because a lot of the aunties wanted to buy their meat or the ingredients. I'm just in the way. And they're like, she's recording us. I'm like, I'm so sorry. Some of the shop people from the Kashmir Straw were so supportive the whole time and made sure there was no mess and were able to give the customers what they wanted while I was able to film what I wanted as well.
12: That's lovely. So the support from the actual meat store as well.
11: Yeah.
12: Has there been an interest in seeing the film? Where has the film been showcased and how can you access it?
11: So you can find it through my YouTube called Safi Cat, and there's loads of other videos on there, but you'll find my three episodes on there on my YouTube channel.
12: And why were there three episodes?
11: Because of my audience. My audience, I believe, are quite young, considering the data. So I knew, considering the times these days, a lot of consumers, they have quite short attention span.
12: Okay.
11: So I wanted to cut it down a bit so they're able to retain the message and watch it more easily.
12: So it's accessible and it's and the short bites, bursts of makes you more intrigued to watch the next episode. Yeah. So is it just going to stay at three episodes? Or are you
11: inshallah one day, if my grandma's feeling up to it, or even my nanny, if she comes back to England for holiday, I can do more episodes because I would really like to.
12: And I would really like to see more. I think it sounds absolutely amazing. I love the concept of the intergenerational relationship here that we're seeing, and with such pride as well, and being celebrated. Has your nani seen, or have they seen the actual footage, and what have they thought about the film?
11: My grandma has, yes. She thought it was wonderful, the whole concept, because I'll be recording and stuff, taking video clips and telling her what she needs to like lay out the ingredients this way. Oh, this is the next scene. And she has no idea what's going on. And like, what are you doing? She's just confused by the whole process, but she just goes with it. But to see it in the actual video form, I guess, was quite inspiring for her. And at the end of the project, I think it made her feel quite positive and made her feel proud of herself as well.
12: I love the fact that you've just said feel proud of herself, and so she should. Yeah. Mashallah, she's She is the pinnacle of the generations that have come and settled here, and to celebrate her life in this way. Do you think you're inspiring other people in Luton to kind of build this archive?
11: I mean, I would like to. I'd like to have my message to be that way. And also to the South Asian hijabis and non-hijabis out there who feel like there's not much representatives out here in Luton or even in the filmmaking or arts kind of world. There is some of us, we were quite minority, but there's not much visibility for us. Hopefully by seeing me and seeing my work, they're like, ah, oh, I would like to be her one day. Oh, there is a chance for me, because we have that person in Luton and in the filmmaking industry as a whole. And
12: absolutely. Yeah. So you're talking about representation.
11: Mm-hmm.
12: So for you, was there any? Could you see any?
11: Honestly, no. Okay. I've never seen a young Muslim, especially from our time, doing so well in terms of the filmmaking world. It seems like most of those type of people come from either London or Hollywood, like big name places where they have possibly connections or know the right people. Mm. So coming from a small town where you don't know much people or even the right people, it was quite hard to see.
12: What have you learnt about yourself, and what have you? Where do you see yourself now after this process?
11: Honestly, I'm a lot more confident in terms of putting myself out there. And this project has certainly brought me out my shell and given me a newfound confidence in the sense that even when I'm scared of doing things, I am still doing them despite it, because that's how you grow as a person. And who knows, something might good come out of it. And that's the case with this project and the people I've met through it and the opportunities.
12: Inshallah. You have such a lovely, positive mindset. And I love the fact that you've seen your growth, you've seen the benefit of that, but you also want to kind of provide others that opportunity too. Do you feel that you want...